0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Hazza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
6: मंगला जो भी मंगना मिल जूगा
7: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: रूप नैरा ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM.
7: Hits.
8: Music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

body.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फिजा 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is a public service announcement.
3: The station
4: that plays
3: foot tapping music.
5: Hazar 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।

0: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग प्लास्टरिंग ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
0: मुगल बिल्डर्स साफ सुथरा काम बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स जगह बदले भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਦੂਆਂ ਦਾ

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1.
5: ठहरिए जरा. ये commercial तो सुन ले.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
7: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए
8: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं
7: सलासा ट्यूशन सेंटर
8: जी हाँ इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है
7: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता
8: मसला ही कोई नहीं सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है
7: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ
9: जी हाँ आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231 कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा
10: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
11: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन सॉन्ग्स बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ तो जुड़े रहिए सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is a public service announcement.
3: The station
4: that plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही।
1: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27th मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
9: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
2: फजान 97।
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना।

0: सुपर मार्केट नाउ ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM to 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-0792।
2: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
3: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
4: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
3: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
4: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
3: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
4: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
3: Park Foods, जो नाम है मायार का।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
8: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
7: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
8: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
7: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
8: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
7: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
8: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
7: टेस्ट भी, वाइब भी।
9: You are listening 97.1 FM.

0: सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
0: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
0: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
5: This is a public service announcement.
6: Everybody. The station that plays
7: foot tapping music.
8: Haza 97.1 FM.
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड एप।
10: You are listening 97.1 FM.
11: Non-stop hits, non-stop energy. Radio Fuzza 97.1 FM.
12: You are playing. We are playing Fuzza 97.1 FM.

चलो लिसनर्स, बस इतना ही कहूंगी कि इस बदलते हुए मौसम के साथ आपको रखना है अपना और भी ज्यादा ख्याल. क्यों? क्योंकि समटाइम्स सडनली जो मौसम चेंज होता है, अप एंड डाउन तो फिर चलता रहता है. सो उसके चलते चलते आई नो बहुत सारे लोग इस वक्त बीमार हो चुके हैं और बीमारी का शिकार हो रही हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है. जब सडनली हमारा वेदर एकदम से बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली, सो काफी ज्यादातर लोग उस चेंज को नहीं फेस कर पाते, जिसके नतीजे में वो लोग बीमार हो जाते हैं. तो आप सभी ने क्या करना है, आपने करना है अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और कोशिश करना है कि बिना किसी वजह, अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है सो कोशिश करें आप घर से बाहर ना निकले, और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप सनब्लॉक यूज करें, क्योंकि हीट वेव से बचने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन को भी बचाएं, और एक अच्छा गुड सनस्क्रीन ही आपको हीट वेव से बचा सकता है. और बाकी यही कि स्टे होम, स्टे सेफ.

तो जी लिसनर्स, हमेशा की तरह जिस तरह से मैं हमेशा हर रोज कहती हूँ कि एक खूबसूरत अच्छे दिन का स्टार्ट होता है एक खूबसूरत अच्छे एक हेल्दी मील के साथ. सो आई थिंक सो कि आज का हेल्दी मील आप लोगों ने अभी तक ले लिया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया सो ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप मत किया करें, ब्रेकफास्ट लाजमी किया करें, क्योंकि हम पूरा दिन बहुत सारा काम करते हैं, हमारी एक हेक्टिक रूटीन होती है जिसमें डेली बेसिस पे सुबह उठना, जल्दी उठ के टाइम से ऑफिस जाना, अगर तो ऑफिस नहीं जाना तो स्कूल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जाना या फिर डिफरेंट तरह के वर्क प्लेस पे. सो इस पूरे हैक्टिक और बिजी डे को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की. और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमें मिलती है एक अच्छे ब्रेकफास्ट से. सो आप कोशिश किया करें कि आप ऐसी चीज़ें ब्रेकफास्ट में लें जो कि बिल्कुल भी हैवी ना हो, प्लस हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हो. अब सिंपली अगर आपका सुबह उठ के, बहुत सारे लोगों से मैंने ये भी सुना है कि उनका ब्रेकफास्ट करने का दिल नहीं करता, सो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला है सो सिंपली आप फ्रूट्स ले सकते हैं. ज़्यादा अगर कुछ ना भी लें तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि एक पूरा दिन गुजारना होता है, तो अगर आप अच्छा ब्रेकफास्ट करेंगे तभी एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो पूरा दिन स्पेंड होगा. ये तो बात होगी हमारी एनर्जी के डोज की. अब ज़रा बात करते हैं हमारे माइंड को रिफ्रेश करने की. सो जहाँ बात होती है माइंड रिफ्रेशिंग की, वहीं म्यूज़िक का नाम आता है, क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि म्यूज़िक इज़ द थेरेपी ऑफ सोल. सो अगर आप चाहते हैं कि आपका मूड भी हो जाए रिफ्रेश, तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, और इसी खूबसूरत से ट्रैक से शो का आगाज़ करते हैं.

थी। तो लिसनर्स, गाना हमने ढूंढ लिया है और ये गाना भी हमें हमारे एक लिसनर की रिक्वेस्ट आई थी, सो हम उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे और उनके कहने पर हम ये गाना शो में शामिल करेंगे। तो चलिए आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक।

0: It's commercial time.
1: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing.
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं टट्टीवा डायलॉग जो के ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM। हमेशा की तरह जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम स्टार्ट करते हैं अपने हर दिन का एक खूबसूरत से एनर्जेटिक से ट्रैक से। सो वेल, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय किया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा एनर्जेटिक नहीं था। आप सभी भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन वैसे ही मैं सोच रही थी कि कोई ट्रैक प्ले करो और सडनली हमारे एक लिसनर ने कहा कि ये ट्रैक प्ले कर दें। सो फिर मैंने जल्दी से यही प्ले कर दिया। वेल, अभी म्यूजिक का सिलसिला तो चलता रहेगा, कुछ और भी गाने शो में शामिल किए जाएंगे जो होंगे एनर्जेटिक। सो इसके आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन अब वक्त आ गया है शो में आज के दिन को स्टार्ट करने का। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मेरे हर शो की परंपरा है कि हम स्टार्ट करते हैं एक खूबसूरत सी मोटिवेशनल सी बात से। सो आज का शो भी हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसी ही पॉजिटिव बात से जो कि आपके और मेरे माइंड में ले आएगा एक पॉजिटिव एनर्जी को, जो कि हमें मोटिवेट करेगी कि हम थ्रू आउट द होल डे अच्छे से वर्क करें। ना सिर्फ अच्छे से वर्क करें बल्कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आ रही हैं या जो भी नेगेटिविटी, समटाइम्स होता है ना कि जेलसी फैक्टर भी आ जाता है, सो ये उन सभी फैक्टर्स को कर देंगे थोड़ी सी साथ, थोड़ी सी देर साइड पे। सो सुनते हैं आज का खूबसूरत सा मोटिवेशनल सा कोट।

ठीक है लिसनर्स, हमारा आज का मोटिवेशनल कोट कुछ यूं है कि जिंदगी में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो कि अपने आसपास इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हैं। सो इस कोट से हम ये सीखते हैं कि आप जिस भी जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हो, चाहे आप एक लोअर पोजीशन पर हो या फिर हो एक हायर पोजीशन पर, सो आप कभी भी तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि आपका आसपास इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट आपसे सेफ फील करे। सो आज का जो हमारा कोट है ये हम डेडिकेट करते हैं उन सभी बिजनेसमैन्स को, उन सभी लोगों को जो कि किसी भी हायर पोस्ट पे जॉब कर रहे होते हैं और उनके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन समहाउ वो उन लोगों का ख्याल नहीं करते, एहसास नहीं करते और उनके बेसिक राइट्स को फुलफिल नहीं करते। सो इट्स 2026 एंड स्टिल देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि अपने आसपास इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखते। सो आज के इस कोट से आपको, मुझे, हम सभी को ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि आप तभी तक जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि आपका इन्वायरमेंट आपसे सेफ फील ना करे। सो लिसनर्स, वेल, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कोट अच्छा लगा होगा और आपने आज के इस कोर्स से क्या चीज़ सीखनी है। आपने आज के इस कोर्स से ये चीज़ सीखनी है कि अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा हो कि आप किसी जगह जाते हो या कहीं पर भी आप रिलाई कर रहे हो, एग्जिस्ट कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आपके आसपास के लोग क्या आपसे हैप्पी हैं। इफ़ दे आर हैप्पी सो आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हो। अगर आपके आसपास के लोग आपसे हैप्पी फील नहीं कर रहे, सेफ फील नहीं कर रहे, सो आपका बीइंग अ लीडर, आपका जो रोल है, इज अ फेलियर। क्योंकि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मैनेजर या फिर एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जिसके एम्प्लॉयज, जिसके वर्कर्स उसके साथ सेफ फील करते हैं और उसके वर्कर्स उसके काम से खुश होते हैं। सो आज का हमारा कोट जाता है तमाम तर कारोबारी हजरात को।

जी तो लिसनर्स, आप सभी सोच रहे होंगे कि काफी सीरियस और बोरिंग बोरिंग सी डिस्कशन चल रही है, सो माहौल को करते हैं थोड़ा सा तब्दील। अब ये तब्दीली किस तरह से आएगी? तब्दीली आएगी थोड़ी सी इंटरटेनमेंट की शक्ल में। सो जी लिसनर्स, सुनते हैं एक अच्छा सा ट्रैक ताकि मूड भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए और बोरिंग बोरिंग बातों से जो हमारा मूड हो गया है थोड़ा सा बोर, उसको भी थोड़ा सा चेंज किया जाए। सो जी लिसनर्स, आप भी मुझे अपना फेवरेट साउंड ट्रैक बता सकते हैं सिंपली 0115710071 हमारा स्टूडियो का नंबर है, यानी कि मेरा और आपका रابطے का नंबर। इस नंबर के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आपको किस किस्म के ट्रैक्स पसंद हैं और आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके फेवरेट साउंड ट्रैक को शो में शामिल करें। सो फिलहाल के लिए आप सुनिए मेरा फेवरेट साउंड ट्रैक

तो लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस ट्रैक को एंजॉय किया होगा। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल गाने प्ले कर रही हूँ, सो उसकी कोई खास रीज़न नहीं है। वैसे ही आज मेरा दिल कर रहा है थोड़े इमोशनल सैड सॉन्ग्स सुनने का, सो जो मेरा दिल करता है मैं सोचती हूँ कि वही सॉन्ग अपने लिसनर्स को भी सुनाया जाए। वेल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कोई सॉन्ग रिकमेंडेशन को मैं शो में शामिल करूँ, सो सिंपली 01157100971 जो कि है हमारा स्टूडियो का लाइव नंबर, सो आप मुझे इस नंबर के थ्रू बता सकते हैं आपके फेवरेट सॉन्ग को ज़रूर शो में शामिल किया जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी पसंद के अकॉर्डिंग ही गाने प्ले करूँ। सो डियर लिसनर्स, ये तो था हमारा म्यूजिकल सेगमेंट, इससे रिलेटेड बातचीत। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जाने। सो डियर लिसनर्स, आज हम बात करेंगे अपने इस सेक्वेंट में कुछ ऐसी वुमेन्स के बारे में, यानी कि कुछ ऐसी हवतीन जिन्होंने दुनिया के नक्शे पर अपना नाम ऐसे स्याही से लिखा जो कभी भी मिट नहीं सकता। आज की कहानियां हैं हम उन सुपर पावर्स, यानी कि उन सुपर वुमेन्स की बात करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को कुछ नया करके, ना सिर्फ कुछ नया बल्कि कुछ मुनफरिद करके दिखाया। सो इसीलिए मैंने आज आप सभी के लिए कुछ ऐसे ही इंस्पायरिंग इंस्पिरेशनल वुमेन्स ढूंढी हैं, यानी कि वो तमाम तर डीवास जो कि ना सिर्फ फैशन आइकन के तौर पर जानी जाती हैं बल्कि अगर देखा जाए तो एक न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने के तौर पर भी जानी जाती हैं। सो इसी लिस्ट में आज की जो हमारी फर्स्ट आइकॉनिक डीवा हैं, उनकी स्टोरी आप सभी से शेयर करती हूँ। सो इस लिस्ट में फर्स्ट नेम है रेशमा सुजानी, जो कि एक अमेरिकन लॉयर और पॉलिटिशियन थी जिन्होंने जब देखा कि टेक इंडस्ट्री यानी कि कंप्यूटर कोडिंग में लड़कियां बहुत पीछे रह चुकी हैं, तो उन्होंने ये चीज़ सोची कि क्यों ना ये फील्ड जिसे लोग समझते हैं कि ये लड़कों की फील्ड है, एज सच नहीं है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नया रेवोल्यूशन लेकर आया जाए, ना सिर्फ लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी इक्वली फुल अपॉर्चुनिटीज दी जाए इन द मीडिया, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2012 में गर्ल्स हु कोड नेम से एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। उनका बेसिकली मकसद था कि टेक इंडस्ट्री में मर्द और औरतों में बिल्कुल भी फर्क नहीं किया जाए और दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए और दोनों ही टेक्नोलॉजी के मामले में इक्वली आगे जाएं। तो बेसिकली उनकी इस ऑर्गेनाइजेशन से जो आज तक की सर्वे के अकॉर्डिंग 5 लाख से ज़्यादा लड़कियों ने कोडिंग, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी है। रेशमा ने लड़कियों को सिखाया कि बी ब्रेव नॉट परफेक्ट, ब्रेव बनो परफेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता इस दुनिया में। अगर हम कोशिश भी करें ना कि हम टोटली परफेक्ट बन जाएं, सो इट्स नॉट पॉसिबल परफेक्ट बनने के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में गॉड ही एक ऐसी ज़ात है जो कि परफेक्ट है। हम इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। सो उन्होंने यही बताया कि बी ब्रेव, अगर आप हिम्मत रखोगे सो आप मुश्किल से मुश्किल, नामुमकिन से नामुमकिन बल्कि वो सभी काम कर सकते हो जो कि माना जाता है कि लड़कियाँ नहीं कर सकती। अच्छा, जहाँ तक मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, सो टू ऑल माई लिसनर्स, वो ये है कि सोसाइटी ने एक पोर्ट्रे क्रिएट कर दिया है जिसके अकॉर्डिंग कि सर्टेन कंडीशंस हैं कि लड़कियां ये कर सकती हैं और सर्टेन कंडीशंस जिसमें सोसाइटी खुद ही डिसाइड कर लेती है कि अच्छा ये काम लड़कियां नहीं कर सकती। जबकि आज के दौर में इट्स 2026, हर इंसान को पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो हर काम कर सके। और मैं यही कहूँगी कि ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अच्छा ये लड़कों की फील्ड है, सो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी स्पेसिफिकली लड़कों की फील्ड नहीं होती। अगर आप चाहती हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप भी उस फील्ड में आगे आ सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। सो बेसिकली इन जैसी इंस्पिरेशनल हवतीन ही होती हैं जो कि ना सिर्फ खुद तो दुनिया में कुछ अलग, कुछ मुनफरिद, कुछ नया करती हैं बल्कि साथ ही साथ बहुत सारी नई हवतीन के लिए भी रास्ता खोलती हैं। सो उनकी इन ऑर्गेनाइजेशन से अब तक के मुकाबले में काफ़ी सब लोगों ने, स्पेशली वुमेन ने बहुत कुछ सीखा और इनकी खिदमात काबिले फरामोश हैं।

उन्हें अटलांटिक ओशन के ऊपर से अपना जहाज उड़ा के दिखाया, और वो भी बिना किसी मदद के, बिना किसी सपोर्ट के। ये उस वक्त की बात है जब औरतों को सबसे बड़ा हत्या ही घर से बाहर निकलने को समझा जाता था। लोग कहते थे कि वुमेन्स को घर में रहना चाहिए, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। उस दौर में उन्होंने कुछ ऐसा अलग, नया, मुनफरद करके दिखाया जिससे लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने हर उस लड़की को उम्मीद दी जो समझती थी कि आसमान सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए है। उनका कहना यह था कि मुश्किल काम सिर्फ इसीलिए करो क्योंकि तुम उनको करके दुनिया को दिखा सकती हो और खुद को मनवा सकती हो। हाउ इंस्पिरेशनल एंड हाउ इंस्पायरिंग। सो देखा, इन्होंने भी यही कहा ना कि कोई भी फील्ड सर्टेनली लड़कों या लड़कों की नहीं होती। अगर आप चाहते हैं, आपका ग्रिप अच्छा है उस चीज़ में, तो आप वो ज़रूर परस्यू करें, नो मैटर कि रास्ते में कितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टीज तो फिर इस द पार्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी जहाँ आगे बढ़ती है वहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सो ये थी हमारी आज की दूसरी आइकॉनिक इंस्पिरेशनल वूमेन।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिन

0: Ya फिर इंग्लिश और अरबिक तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।

वेलकम बैक वंस अगेन. एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं द टीवर डायलॉग जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे.

जी दोस्तों, जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उन आइकॉनिक इंस्पिरेशनल दीवास की, जो कि जिन्होंने ना सिर्फ खुद के लिए कुछ नया इनिशिएटिव किया बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हमवार किए जिससे ना सिर्फ दूसरी खवातीन आगे बढ़ सके बल्कि कुछ नया सीख सके और दुनिया को खुद का लोहा मनवा के दिखा सके। सो इस लिस्ट में दो इंस्पिरेशनल वुमेन की स्टोरी मैंने आप सभी से शेयर की। अब जरा उसी लिस्ट को आगे से कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डीवा की जानेब।

जी तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये ट्रैक? ये ट्रैक थोड़ा सा डिफरेंट था एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टू ट्रैक्स, क्योंकि वो थोड़े से सिंपल और थोड़े से इमोशनल टाइप के थे. सो मैंने सोचा कि क्यों ना अब थोड़ा सा ट्यून को बदला जाए और रिदम के अगेंस्ट चला जाए. सो वेल, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये ट्रैक अच्छा लगा होगा. अब सर आप बारी आती है हमारे शो को, यानी कि डीवा डायलॉग को आगे बढ़ाने की और शो में शामिल करने की नेक्स्ट सेगमेंट. सो हमारा आज का नेक्स्ट सेगमेंट है, जो कि आप सभी को मालूम है, मेरा आपका फेवरेट द स्पाइस किचन, जिसमें हम बात करते हैं मज़ेदार सी चटपटी सी इंस्टेंट रेसिपीज की, जो कि बहुत ही ईजिली बन जाती हैं. प्लस उनकी खासियत ये होती है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनमें तमाम तर बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो और आप इजीली इन रेसिपीज़ को ट्राई कर सकें. सो आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक ऐसी ही रेसिपी, जो कि ज़रा डिफरेंट फ्यूजन की है. और आज की जो हमारी रेसिपी है वो तमाम तर एशियन कम्युनिटी को ज़रूर हिट करेगी. सो बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी से शेयर करती हूँ आज की रेसिपी के इन्ग्रीडियंट्स. तो लिसनर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा, जो कि मिडिल ईस्ट पे बहुत ही ज़्यादा एक फेमस और साथ ही साथ अगर हम कहें तो एक हिडन जैम भी है. और एशियन कम्युनिटी इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा खाती होगी, पसंद भी करते हैं, लेकिन इस तरह से इसे वर्ल्ड वाइड उस तरह की पॉपुलैरिटी नहीं है. लेकिन मैंने सोचा कि जहाँ हम डेली बेसिस पर बनाते हैं मीट से रिलेटेड रेसिपीज़, इसके अलावा कुछ वेजिटेबल से रिलेटेड, तो आज क्यों ना ज़रा डिफरेंट किया जाए. सो हमारी जो आज की रेसिपी है ये उन सभी लिसनर्स को जो कि वेज लवर हैं अच्छी लगेगी, और उन बाकी के तमाम तर लिसनर्स को भी जो कि मीट लवर हैं उन्हें भी अच्छी लगेगी. सो आप सभी से इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए. हमें कुछ ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं. उम्मीद करती हूँ कि हाफ तो आप सभी के घर में होंगे, लेकिन जो दो से तीन इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे सो वो हम इजीली मार्केट से खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है.

तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये ट्रैक? ट्रैक के साथ साथ इस वक्त शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. सो अब हम आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब. आपसे मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार. तब तक के लिए हमारे साथ यानी रेडियो फजा 97.1 FM के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए. स्टे ट्यून विद अस एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा। आप सभी को खुशामदीद करती हूँ उन सभी लिसनर्स को जिन्होंने हमें थोड़ा सा लेट ट्यून किया था, और उन सभी लिसनर्स को जो कि शुरू से हमें ट्यून कर रहे हैं कि वेलकम एक बार फिर से द टी वाई डायलॉग में, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM में। जो तो लिसनर, जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे स्पाइस किचन की चटपटी सी रेसिपी की, सो जहां से हमने अपनी रेसिपी को छोड़ा था अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी रेसिपी को। सो सबसे पहले अब इसका प्रोसीजर मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती हूँ। वेल होप सो कि आपको भी ये रेसिपी उतनी ही मज़ेदार लगेगी जितनी कि ये मुझे लगती है।

सो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है. आप कोई भी पैन यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस. उसमें आपने 1 कप बेसन शामिल करना है. शामिल करने के बाद उसे अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है ताकि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने, ठीक है. आपने अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब इसमें आपने शामिल करने हैं जो जो इन्ग्रीडियंट्स, वो मैं आप सभी से शेयर करती हूँ. आपने इसमें शामिल करना है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक और 5 से 6 कप पानी. अच्छा, ये सभी इन्ग्रीडियंट्स जब आप शामिल कर लेंगे तो फिर आपने इन सभी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्सअप करना है. इतना अच्छे से मिक्स करना है कि वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स होकर एक अच्छा सा थिक सा बैटर बन जाए.

तो लिसनर, जैसे ही आपका बैटर हो जाए बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी में बिना गुठलियों के, अब हम क्या करेंगे, इसे रख देंगे तेज आंच पर और इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अच्छा, जब आप इसको पका रहे हो तो मेक श्योर कि आपने चमचा साथ साथ हिलाते रहना है जब तक उबाल ना आ जाए। उबाल आने के फौरन बाद आंच धीमी कर दें और इसे ढक कर लगभग 40 to 50 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक करें।

सो या आपने इसे तब तक पकाना है कि जब तक आपको फील हो के जो बेसन है अब वो अपनी असली शक्ल से थोड़ा सा अलग हो चुका है और अच्छे से पक चुका है, उसका कच्चापन दूर हो चुका है. सो आई थिंक सो इट्स प्रोसेस पे 40-50 मिनट्स लग जाएंगे. आई नो इट्स अ स्लो कुकिंग प्रोसेस बट ट्रस्ट मी व्हेन जब आप इसको बनाएंगे आपको ज़रूर ऐसा फील होगा कि आपकी मेहनत वर्थ इट गई. सो अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 पे. ठीक है, सो यहाँ तक हमारा स्टेप 1 स्टेप 2 कम्प्लीट हुआ. इन दोनों स्टेप्स में हमने कड़ी को रेडी कर लिया. अब हम बनाएंगे स्टेप नंबर 3 में पकौड़े. क्यों? क्योंकि ये कड़ी फेमस ही पकौड़ों की वजह से है. सो आई नो आप सभी को पकौड़े बनाने आते हैं लेकिन मैं ज़रा आपको सिखाऊंगी अपने डिफरेंट से स्टाइल में, डिफरेंट से फ्यूजन में. सॉरी लिसनर्स, पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लेना है एक अदद बाउल. अच्छा, इस बाउल में अब हम शामिल करेंगे तमाम तर इंग्रेडिएंट्स जो कि पकौड़े बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे बेसन. बेसन के बाद बिल्कुल सी बारीक सी कटी हुई प्याज, हरी मिर्चें और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च. कश्मीरी लाल मिर्च के साथ नमक, नमक के साथ थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्च के साथ धनिया पुदीना. इनको भी अगर हम ऑप्शनल है ये टोटली, लेकिन अगर हम इसको ऐड करते हैं सो पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं. सो उनको शामिल करेंगे. साथ ही साथ अगर आप आलू लवर हैं सो आप आलू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं शामिल कर रही क्योंकि मुझे प्याज के पकोड़े अच्छे लगते हैं. मुझे वो लगता है कि वो ज़्यादा क्रिस्पी, ज़्यादा क्रंची होते हैं. सो अगर आपको पकोड़े में आलू पसंद है सो आप शामिल कर सकते हैं. अच्छी तरह से कट करके चीज़ों को आपस में मिक्स करें. अच्छा, जिस तरह से अब हम क्या करते हैं, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमने हाथों की मदद से अपने तमाम तर इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्सअप कर लेना है. ठीक है, अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है जैसे आपको लगे कि यह बहुत ज़्यादा ड्राई है. सो साथ साथ जब आप इसको मिक्स कर रहे हो साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी आप ऐड करते जाएँ और जब आपको लगे कि अब आपका बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए, रनी नहीं, अदरवाइज फिर जब आप पकोड़े बनाते हैं तो वो पकोड़े बहुत ज़्यादा टूट रहे होते हैं. सो 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख दें. फिफ्टीन मिनट्स के बाद अब बारी आती है इनको फ्राई करने की. सो आप कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें. कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें शामिल कर दें ये बैटर और बैटर की मदद से बना लें पकोड़े. 2-3 मिनट में आपके पकोड़े अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, क्रिस्पी और क्रंची, और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेंगे. सो बस जैसे ही आपके पकोड़े रेडी हो जाएं इसे आप कड़ी में शामिल कर दें और टड़ा, फाइनली आपकी मज़ेदार सी चटपटी सी पकोड़ा कड़ी हो गई तैयार. देखा कितने कम समय में हमने इस रेसिपी को बना लिया. कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था इसमें. अब आप चाहें तो आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं.

तो लिसनर्स, ये थी हमारी आज की मजेदार सी चटपटी सी रेसिपीज। आई होप सो आपको ये, आप सभी को ये रेसिपीज बहुत अच्छी लगी होंगी। अपना फीडबैक लाजमी मुझसे शेयर किया करें, क्यों? क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और साथ ही साथ मुझे ये भी पता चलता है कि आपको किस तरह की रेसिपीज पसंद हैं और आप क्या सुनना चाहते हैं। ऐसे के साथ ही लिसनर्स, शो में वक्त हुआ है इख्तिताम का। आई नो बातें करते हुए, गपशप करते हुए इतना मजा आ रहा था, सो जाने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि हर एक चीज़ के स्टार्टिंग के साथ साथ उसके इख्तिताम का वक्त भी मुकर्रर होता है, तो कुछ इसी तरह से अब द डीवा डायलॉग का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचता है। याद रखिए लिसनर्स, शो अभी ख़त्म हो रहा है लेकिन आपका दिन, आपकी सुबह अभी बाकी है। सो इट्स द टाइम, इट्स द मोमेंट कि आप ठंडी से बाहर निकलें, यानी कि अपने माइंड को थोड़ा रिफ्रेश करें और इधर उधर की आगे पीछे की टेंशन्स को साइड पे कर दें और बिल्कुल इस तरह से फ्रेश होकर सोचें कि आपको ज़िंदगी में आगे क्या करना है, आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है। क्यों? क्योंकि बिना गोल्स के, बिना मकसद के कुछ भी नहीं हो सकता और वह इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता कि जिसकी ज़िंदगी में कोई गोल ही ना हो, उसका कोई मेन मोटिव ही ना हो। सो इसी अच्छी सी खूबसूरत सी बात के साथ शो को वाइंड अप करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। जाते जाते एक बार फिर से बताती हूँ कि radiofaza.com.uk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी इस वेबसाइट के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारा शो ट्यून कर सकते हैं और आपको डेली लाइव अपडेट्स भी मिल सकती हैं और आप हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। फौरी तौर पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप जान सकें कि आपका फेवरेट आरजे कौन से वक्त, किस दिन, किस शो में आ रहा है। साथ ही साथ आपको एक बार फिर से बताती चलती हूँ कि 01157100971 है हमारे स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर। इस समय के थ्रू आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लाजमी फीडबैक शेयर करिएगा और बताइएगा। सॉरी लिसनर्स, इसी के साथ साथ शो में शामिल करती हूँ एक इख्तितामी साउंड ट्रैक। चलते हैं, आप सभी को अलविदा, अल्लाह हाफिज़, और जाते जाते ये खूबसूरत सा ट्रैक सुनिए।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, maths and science? SLASA Tuition Center and Homeschooling.

0: Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
1: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनती हुई समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रही हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह सलूर आज की। सो उसी के साथ साथ जो है वो प्रोग्राम एक ट्रैक शामिल किया था, एक छोटी सी फरमाइश में बस मौजूद हो। ओहो, मैं ये कह रही थी कि वो मेरा हाथ ज़रा सा ना साइड पे लग गया, तो वो कुछ और मतलब मैंने ट्रैक एक प्ले करना था और वो दूसरा ट्रैक प्ले हो गया। सो वेल, अभी के लिए प्रोग्राम में जो है एक बड़ा ही प्यारा ट्रैक है उसको मैं शामिल करूँगी और फिर उसके उस पर आपसे मुलाकात करूँगी। सवाल शामिल करते हैं कोक स्टूडियो सीज़न 9, इसके उस पार रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैप, मिलते हैं इसके उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। सर, फिर ग्राम में मैंने सोचा कि बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए ताकि आप मेरी आवाज़ को भी सुनते रहें और साथ साथ ट्रैक भी सुनते रहें। बल फिर ग्राम में जो है टॉपिक शामिल करवाऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास ना उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेरे दिमाग में बात आ नहीं रही कि मैं ऐसा कौन सा टॉपिक प्रोग्राम में शामिल करवाया जाए जो आपके मूड को जो है वो स्वस्थ कर दे। बट कोई बात नहीं, टाइम लगेगा क्योंकि अभी मेरे आपके दरमियान काफ़ी ज़्यादा टाइम है। 2 बजे तक मैं आपका साथ दूंगी।

रहने लगे। अब ये अचानक एक छोटी सी बात मेरे सामने आई कि छोटी छोटी कामयाबियाँ भी है ना जो वो बहुत अहम होती हैं। सो वो डिपेंड करता है इंसान पे कि वह किस तरह की होंगी। ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ी कामयाबी जो है वही आपको किसी अच्छी मंजिल तक लेके जा सकती है। नो, छोटी छोटी कामयाबियाँ ही जो है ना वो इंसान को बहुत आगे तक लेके जा सकती हैं। लेकिन मसला ये आता है कि जब हम अपने दिमाग में एक चीज़ को बिठा लेंगे कि हमने इस चीज़ को करना ही करना है, लेकिन किसी इंसान के अगर मुंह से ये बात सुने कि नहीं यार तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, तो वो हमारा दिमाग जो है ना फिर पकड़ पकड़ के नेगेटिव बातें ही लेके आता है। सो उस चीज़ की तरफ हम बढ़ भी नहीं पाते फिर। लेकिन जब हम अपने गोल्स को दूसरों को बता देते हैं ना कि हम ये चीज़ करने वाले हैं और उस चीज़ तक पहुँचने में हमें उस तरह से मतलब कामयाबी नहीं हासिल हो रही होती, सो उस टाइम पर जो है ना हम दूसरों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, अपने लिए नहीं कर रहे होते। सो कोशिश ये करें कि जब आप किसी भी तरह की प्लानिंग करते हैं, किसी भी तरह का अपना मतलब कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं, सो उस बात को अपने तक ही रखें, क्योंकि जो चीज़ें छुपा के रखी जाएं वही कामयाब होती हैं। अब वो किसी भी तरह की भी हो सकती हैं, कोई रिश्ता हो गया, किसी भी तरह की बात। समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले जो हैं वो हंस के बात को टाल देंगे। बट प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाए और आप उस पर अमल भी करें। यकीन जाने किसी ने भी मेरे प्रोग्राम में किसी भी बात पर अमल कर लिया तो मैं समझूंगी कि मेरा प्रोग्राम करने का जो मकसद है वो पूरा हो चुका है।

सवाल बात कर रहे थे कि जब हम अपनी चीजों को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो चीज़ जो है ना इंसान को थोड़ा सा मतलब डामाडोल कर देती है। लेकिन कोशिश ये करें कि अपनी बातों को, अपने उन इरादों को अपने तक ही संभाल के रखें, दूसरों के साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंसान का सबसे बड़ा दोस्त वो खुद ही है, खुद को बातें बताएं, खुद से ही शेयर करें, ना कि किसी दूसरे पर्सन को बताएं। आपने सुना ही होगा कि जब आप किसी दोस्त को किसी भी तरह की कोई बात बताते हैं तो वो कहते हैं ना कि दोस्तों के भी दोस्त होते हैं, तो क्या आप तो वो आपकी बात आगे किसी के साथ डिस्कस करता हो। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी कामयाबी के पीछे दूसरों का नुकसान कर देते हैं। सो दूसरों का नुकसान बिल्कुल भी मत करें। कामयाबी वही होती है जिसके पीछे आपने दूसरों का भी फ़ायदा सोचा हो, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत सी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी देखे हैं जो कामयाबी तक पहुँचने पहुँचा मतलब अपनी मंजिल तक पहुँच ही रहे हैं, लेकिन लोगों की बातों में आके भाई तुम ये नहीं कर सकते, तो वो अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन वहाँ से आके जब वो यू टर्न ले लेते हैं ना, तो यहाँ से आके गेम जो है वो ख़राब हो जाती है। सो अगर अपने दिमाग में आपने एक बात को ठान लिया है कि यार ये चीज़ मैंने करनी ही करनी है, सो वो कर सकते हैं। जब तक आपका माइंड आप पॉजिटिव सोचेंगे तब तक वो चीज़ होगी, लेकिन जब आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे ना, तब वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि इंसान जो है वो इन दो चीज़ों पे खुद ही सोचता है। मैं अक्सर मेरी किसी के साथ किसी भी तरह की बात हो जाए तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप नेगेटिव क्यों सोचते हैं यार, आप पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं। सो आप पॉजिटिव ही सोचें, नेगेटिव सोचने वाली तो कोई बात है ही नहीं। ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपनी सोचों को कैसे लेकर चले। सो इसी के साथ साथ जो है इसी की इन्फॉर्मेशन अगर आप मुझ तक पहुंचाना चाहें तो हम पहुंचा सकते हैं। ज़िंदगी में हम जो है अक्सर कामयाबियों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ को नहीं देखते कि जो चीज़ हमें पीछे खींच के लेके आ रही है, जो चीज़ हमें कामयाबी की तरफ नहीं जाने दे रही, उस चीज़ को हम ख़त्म नहीं करते, और वो चीज़ इतनी आसानी से नज़र आती भी नहीं है। कहते हैं कि जब आपने किसी जब आप किसी अच्छे रास्ते पे चल रहे होते हैं ना, तो बुराई जो है ना वो बीच में आपके आपको तंग ज़रूर करती है, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि वो चीज़ है क्या, वो हमारे साथ हो क्या रहा है। इसी तरह फिर रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो कामयाबी ही बनती है, लेकिन हम उन छोटी छोटी खुशियों को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। सो उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हकीकत ये है कि बड़ी मंजिलें भी जो है ना छोटे छोटे कदमों से ही हासिल होती हैं। सो कोशिश ही करें कि छोटे छोटे कदम रखें, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं या कहीं खाना खाने के लिए निकलते हैं, अब एक इंसान मतलब अगर हमें बहुत भूख लग रही है तो हम अपने कदमों को तेज़ भगाएंगे, मतलब जितना हमारा कदम नहीं होगा उससे ज़्यादा पाँव उठा के आगे रखेंगे, लेकिन जब तक हम अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे तब तक हमें सांस चढ़ जाएगा या फिर हम थक जाएंगे। लेकिन आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जब हम अपनी मंजिल तक आहिस्ता आहिस्ता ही पहुँचेंगे तभी जो है हम कामयाब होंगे। जब हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ना हमें सांस चढ़ेगा ना हम थकेंगे। सो इसी तरह छोटी छोटी एग्जाम्पल्स जो है ना वो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं अगर हम उन पर अमल करें तो। हर वो कोशिश करें जो आपको कल से बेहतर बनाए, एक काम यही एक जो है असल कामयाबी है। आप देखें ठोकर की बात इसमें ये मुझे नज़र आई है, तो अगर मेरे ख्याल में ठोकर वोकर कुछ नहीं होती, इंसान को एक सबक मिलता है ज़िंदगी में और वो सबक से ही सीखता है, मतलब वो जो चीज़ उसने पीछे की होती है फिर वो आगे आके नहीं करता। स्कूल टाइम में अगर आप देखा जाए तो आप अगर किसी पेपर में आपकी सप्ली आ गई है तो आप उस चीज़ को फिर नोट करते हैं कि यार अच्छा मैंने वहाँ पे ये गलती की थी तो नेक्स्ट टाइम पे मैंने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सो इसी तरह जो है ना छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। सो हमें अपनी छोटी छोटी कामयाबी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमें जो है ना आगे बढ़कर हौसला देती हैं। सो इस चीज़ का जो है वो आपने मतलब इस चीज़ पे एग्री होना, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को मान नहीं लेते ना तब तक हम उस चीज़ पर काम कर भी नहीं सकते। दूसरों के साथ मुकाबला करने की बजाय आप सफ़र को देखें, क्योंकि हर इंसान की रफ्तार और रास्ता जो है वो अलग ही होते हैं, ना कि दूसरे को देख के उनके पीछे भागें। अपनी कामयाबी देखें, अपना रास्ता देखें, दूसरों के साथ जिद्दबाजी ना करें, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े ना करें, किसी से जल कर जो है उस चीज़ को हासिल ना करें जो आपके फ़ायदे में नहीं है। खैर उसी के साथ साथ गपशप का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा प्रोग्राम में मेरे आपका साथ, बट अभी के लिए प्रोग्राम में जो है एक छोटा सा ट्रैक शामिल करते हैं।
हाँ मुझे पता है कि अभी भी आप ट्रैक ही सुन रहे हैं, लेकिन वो मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक रखा था ना बीजीएम के तौर पे, बट अभी के लिए जो ट्रैक की फरमाइश आई है उसको शामिल करेंगे। बस ढूंढने में जो है ना मुझे बहुत दिक्कत महसूस होती है। अच्छा मजे की बात बताऊँ, मैंने पहले सोचा होता है कि यार ये वाला ट्रैक शामिल करूँगी, ये वाला ट्रैक जाके शामिल करूँ। वीकेंड पर जब मैं जाती हूँ तो वीकेंड पर यही सोचती हूँ कि यार ये वाला ट्रैक जो है ना अपने लिसनर्स को ज़रूर सुनाना है मैंने, लेकिन वो पता नहीं है एंड दी एंड क्या हो जाता है कि मुझे वो ट्रैक्स भूल जाते हैं कि यार मैंने कौन सा ट्रैक किस टाइम पर किस तरह का शामिल करना था, वो चीज़ भी मुझे भूल जाती है। सवाल इसी के साथ साथ आइए प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटा सा ट्रैक, एक खूबसूरत सा ट्रैक। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। छोटी सी फरमाइश आई थी इस खूबसूरत से ट्रैक के उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड 107.1 FM एंड डैप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं?
9: तो अब

0: है अपना मूड चेंज करने का।
1: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
0: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
1: डिलिशियस प्रीमियम स्टेक, जूसी बर्गर्स, क्रीमी पास्तास और फ्रेश ड्रिंक्स, सब कुछ एक ही जगह।
0: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
1: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
0: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
1: टेस्ट भी, वाइब भी।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडी फॉर 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स राउंड, जो आवाज़ आप सुन रहे हैं सलोराज की सोलोसी के साथ साथ। अगला घंटा जो है ना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, यानी कि आगाज़ हो चुका है, अगले घंटे का आगाज़ करेंगे एक ट्रैक के साथ। उसके बाद आपसे मुलाकात रहेगी। मेरा आज बड़ा दिल कर रहा था एक सूफी कलाम सुनने का, लेकिन मैं उसको शामिल नहीं कर रही। अगर कर दूँ तो कोई मतलब बुरी बात भी नहीं है, लेकिन कोई नहीं, हम नहीं करेंगे। फिर अगर मैंने एक सूफी कलाम ऐड कर दिया ना, फिर मेरे पास फरमाइशें भी उसी तरह की आनी है। सो अपनी पसंद का ट्रैक शामिल किए जाती हूँ आपके अपने दरमियान, फरमाइशों को बाद में पूरा कर लेंगे। अभी तक के लिए स्टे ट्यून, कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है फजा के साथ हमेशा की तरह सलोराज।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सवाल उसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो है ट्रैक शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो है ना वो मेरे ख्याल में मैंने लास्ट सेगमेंट रखा होता है म्यूज़िक का, लेकिन फरमाइशें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी आवाज़ को भी आपके अपने दरमियान रखा जाए, लेकिन मज़े मज़े के ट्रैक भी शामिल किए जाए। वो वाली फरमाइशें जो मुझ तक पहुँची हुई हैं, बट वही बात आ गई कि सूफी कलाम शामिल करने का बहुत दिल कर रहा है, अभी अचानक से सामने आया लेकिन मैं रुक गई, चुप कर गई हूँ। बट कोई बात नहीं, जिन नए लोगों ने आज रबी फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का। बताइएगा मौसम कैसा है यहाँ मौसम कैसा है, मतलब स्टूडियो में तो अच्छा है क्योंकि एसी लगा हुआ है, आप बताएंगे बाहर का मौसम कैसा है। थोड़ी सी गर्मी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, खैर बर्दाश्त तो फिर करनी है ना। इन्फॉर्मेशन है प्रोग्राम में, मैंने आपको प्रोवाइड किया, एक छोटा सा टॉपिक शामिल किया था, उस टॉपिक के बाद से डिस्कस आपके साथ करनी थी, बट आपने मेरे साथ अभी तक उस तरह की कोई बात शामिल नहीं करवाई। सब अपने अपने ट्रैक्स की फरमाइश कर रहे हैं कि भाई मेरी पसंद का ट्रैक लगा दो, मेरी पसंद का ट्रैक लगा दो। भाई लगा दूंगी, क्यों पीछे पड़ जाते हो, हंसने वाली बात नहीं है, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी के लिए प्रोग्राम में जो है एक छोटा सा ट्रैक शामिल करते हैं, इस ट्रैक के उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड डैप।

श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठी हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से।
1: जन्म जन्म जन्म साथ चलना कसम तो।
0: सो उसी के साथ साथ प्रोग्राम में मजे मजे के ट्रैक शामिल किए जा रहे हैं। अगला सेगमेंट हमारा जो लास्ट सेगमेंट होता है उसको हम प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं, और अगला लास्ट सेगमेंट जो हमारा होता है म्यूजिक का ही होता है, मैंने म्यूजिक का ही रखा होता है। उसी के साथ साथ मैंने बैकग्राउंड बीजीएम भी थोड़ा सा चेंज किया हुआ था, लेकिन खैर अभी जो है ट्रैक शामिल हो चुका है ये वाला। सो इसी को भी सुन लीजिएगा और साथ साथ मेरी आवाज़ को भी सुन लीजिएगा।

अच्छा, इस मूवी के बारे में बात की थी ना, तो मतलब बहुत मजे की मूवी थी, मैंने देखी। अब मैंने इसको बार बार देखने का दिल करता है। इस मूवी के कुछ ऐसे सीन है जिनको देखने के बाद में बोर नहीं होती, बल्कि एक अलग सी एनर्जी जो है ना वो आती है जिसमें में। सियाने कहते हैं कि भाई प्यार नहीं करना चाहिए, जब आप जिन्हें प्यार कर लेता हो फिर बेड़ा गर्क को दो होना ही होना है। मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि पहले लोग कह देते हैं कि पाँच छः उंगलियाँ बराबर नहीं होती, और फिर एंड पे बेड़ा गर्क करके ये कह देते हैं कि ताली जो है वो तो दोनों हाथों से बजती है ना। खैर, ये बात समझने वाला इंसान ही समझ सकता है। अभी के लिए जो है वो प्रोग्राम में बस एक छोटी सी फरमाइश आई थी, बट मेरी कोशिश है कि उसको शामिल करूँ, ज़रूर करूँ। सैड ट्रैक शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उस माहौल को सेंटीमेंट ही नहीं बनाना हमने। अरे झूठ होता है सब, किसी के बाहों में कोई दो जहान नहीं होते हैं। ये गाने जो है ना, ये इंसान को ख़राब कर देते हैं। बस आपकी दुनिया अपने तक ही मगन रहेगी और कोई दूसरा तीसरा इंसान जो है ना उसमें नहीं आ सकता। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में जो है ना अपने आप को पहले अहमियत दें। जब अपने आप को अहमियत देंगे तभी जो है वो ज़िंदगी जो है ना वो आपको आसान लगेगी। खैर, अभी के लिए जो है वो प्रोग्राम में अभी आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन प्रोग्राम में एक छोटा सा ट्रैक है उसको शामिल करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम रह चुका है मेरे आपके दरमियान।

अब देखिए ना, बदले में वो कुछ मांग रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि मेरी मोहब्बत का देना हक तू अदा कर देना, मतलब बुरी तरह किरण बोल गया। लेकिन मोहब्बत में जो है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर एक आपके लिए किसी बिना के एफर्ट कर रहा है तो बदले में आप उससे मांगे। मतलब मेरी नज़दीक जो है ना, ये चीज़ है कि अगर कोई अगर आप किसी को प्यार करें तो बदले में आप प्यार नहीं मांग सकते। ज़बरदस्ती आप किसी को प्यार करवा ही नहीं सकते, सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है बीच में।

खैर वो उसी के साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी आवाज़, इस आवाज़ के उस पार रहेगी आपसे मुलाकात। लेकिन ये म्यूज़िक जो है ना इस ट्रैक का इतने मज़े का कि मेरा इसको छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा, बट जाना तो पड़ेगा क्योंकि टाइम सो काफ़ी ज़्यादा कम रह चुका है। आइए मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार, सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड डैप। अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, जुड़ना है वजह के साथ विद सलू राज।

अच्छा मैंने अभी वापस आना नहीं था, लेकिन मुझे ट्रैक पकड़ के वापस लाया। मैंने इसकी वीडियो को देख रही थी और वीडियो काफ़ी मज़े की है। मतलब ट्रैक मैंने पहले सुना हुआ है, बट इसमें जो आलिया भट्ट ने जो साड़ी पहनी हुई है ना यार, क्या कमाल की साड़ी पहनी है। मतलब एक नहीं, जितनी भी पहनी है सभी कमाल की पहनी है, बट मुझे बहुत पसंद आई है। और अक्सर हमें वही चीज़ पसंद आती है जो हमारे पास होती नहीं है, जो हमारी नसीब में है ही नहीं, जो हमें मिलनी ही नहीं है। लेकिन फिर ये भी बात आती है कि पसंदीदा चीज़ों से दूरियां ही, मतलब पसंदीदा चीज़ों में दूरियां ही होती हैं।

अच्छा, मैं इस ट्रैक को सुनती हूँ ना तो मुझे मेरे ख्याल में कुछ टाइम पहले की बातें याद आ जाती हैं, मतलब जिस मोमेंट पे मैंने ये ट्रैक सुना मुझे वो चीज़ें याद आ जाती हैं। और इस ट्रैक ने मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी उसको मैंने नज़दीक किया, मतलब जब मेरी उसके साथ इतनी क्लोजनेस हो नहीं थी, मतलब हो रही थी, मैंने इस ट्रैक को सुना था। वो कहते हैं ना कि जब आपने किसी को पहली दफ़ा मिलना हो तो उस जगह पर मिले जहाँ पर आप दोबारा कभी जा ना सकें, और अगर मिल भी रहे हैं तो वहाँ मिलते वक्त कोई ट्रैक कोई इस तरह की चीज़ नहीं सुने, क्योंकि फिर आपको जो है ना दोबारा कभी ज़िंदगी में उस चीज़ को सुनना पड़ेगा। उस जगह पे आप जाएँ तो आपको वो गुजरा हुआ पल बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि उस पल को याद करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बातें जो हैं वो चीज़ें जो हैं सामने हैं तभी हम उनको याद करेंगे, नहीं, वो वैसे भी तो याद आ सकती हैं।

अच्छा, रणवीर की एक नई मूवी आई है और उस मूवी में जो बच्ची है, मतलब जो हीरोइन है, बच्ची तो खैर नहीं है, हीरोइन जो है ना, वो जो है, मतलब मैंने उसको उस टाइम में देखा था एक छोटी सी चीज, और मैंने उसको देखा था जे हो मूवी में, तो उसमें उस बच्ची का हाथ लकड़ी का होता था, और अब वो मतलब इतनी सी इतनी बड़ी हुई है, बट जब मैंने अभी देखा ना, मतलब इतने मतलब बड़े हीरो के साथ छोटी सी हीरोइन डाली है, तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई तो इसमें बात होगी, क्योंकि ऐसी मूवीज़ जो हैं बॉलीवुड की मूवीज़, मतलब इस तरह की ऐसे थोड़ी ना बन जाती है, बीच में पीछे कोई फ़ायदा होता है, कोई बेनिफिट होता है, तभी हर चीज़ को बनाया जाता है। अच्छा, इसी के साथ साथ ना मेरे सामने एक छोटा सा ट्रैक है, और मैं इस ट्रैक को बड़ा बहुत बहुत बल्कि बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। मेरे ख्याल से इसी मूवी का, रोकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी से, मूवी का ही ट्रैक है, और ये ट्रैक बहुत मजे का है। ज़्यादातर इस ट्रैक को वेडिंग में लगाया जाता है या रुखसती में लगाया जाता है, ये रुखसती में ना भी सही तो वेडिंग में जो है एंट्री के टाइम लगाया जाता है। और मैं कहती हूँ यार कि जो लोग ट्रैक को लिखते हैं, मतलब पहले लिखा ही जाता है ना, तो मतलब उसको कैसे लिख लेते हैं, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग, इतना तेज़ दिमाग किसका होगा। तो मैं अभी बैठूँ ना कुछ लिखने के लिए, तो मैं खबूंगी लिखूँगी, लेकिन मुझे शायरी में इंटरेस्ट है, मतलब फिर वही बात आ गई कि इंसान को जिसमें इंटरेस्ट होता है वो उस चीज़ में लिख ही लेता है। मुझे शायरी में इंटरेस्ट है, तो मैं अगर अकेले बैठ के शायरी लिखना चाहूँ तो मैं लिख भी सकती हूँ, लेकिन ये जो ट्रैक लिखना, फिर उसको सुर देना, और उसको बनाना, उसको गाना, ये चीज़ ना मुझे बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, और नई नई चीज़ें सीखने का अपने मज़ा आता है। बट मेरी खुद बड़ी प्यारी आवाज़ है, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला, पर मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं भी ना छोटी मोटी सिंगर बन ही जाती हूँ। चौखट के बाहर क्या गए तेरी कुड़माई। अच्छा, सीरियसली मुझे कुड़माई का मतलब नहीं पता था, जब मैंने इस ट्रैक को सुना फिर मुझे समझ आई, ओके ओके ओके, अच्छा तो इसका ये मतलब था। मैं हर चीज़ जो है वो देरी से ही समझ आती है, लेकिन देर से इधर उस सही वो बात होगी ना।

0: सबल जी के साथ साथ बस कोशिश करें, दुआ करें, सब के लिए दुआ करें, अपने लिए करें, दूसरों के लिए करें। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो सबसे पहले आपके हक में कबूल होती है। सो अल्लाह पाक जो है वो ऊपर वाली की जात जो है वो आप जिसके साथ भी रहना चाहते हैं उसके साथ आपको नसीब करे रहना।
1: मौसम वो तेरे हमसे रोके भी रोके ना।
0: फिर दुनिया वाले आपकी खुशियाँ देखेंगे। बाप अपनी खुशियाँ, वो कहते हैं ना कि राज में रखी बातें, राज में रखे हुए रिश्ते जो है ना वो कामयाब होते हैं। सो कोशिश ये करें कि ऐसे रिश्तों को राज ही रखें, ना कि सबको बताएं चीख चीख के, तभी रिश्ते कामयाब होते हैं। यार इतने मज़े का सॉन्ग है, मतलब मैं इसको जितनी दफ़ा भी सुनूंगी ना मैं ना बोर नहीं होना। खवातीन तो मेरे ख्याल से उदास होंगी, मतलब इसको सुनेंगी और रोने लग जाएंगी। मतलब ट्रैक की कुछ इस तरह से है।
1: अलविदा मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी रौनक हवेली की।
0: बट मैंने इसकी मूवी को भी देखना, कहते हैं कि इसकी मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है। छोटे छोटे टिकटॉक पे रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह देखती रहती हूँ, लेकिन उस तरह से मतलब मैंने पूरी मूवी नहीं देखी। इसको देखूंगी ज़रूर और फिर आपको बताऊंगी कि कैसे रिव्यू आपको ज़रूर दूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि आप इसको देखिएगा।

सोलोजी के साथ साथ वक्त अब जो है वो अपने अहतमाम को पहुंच रहा है। गुड़िया खिलौने का एंड यू मीन इट्स मीन के शो अपने अहतमाम को पहुंच रहा है क्योंकि टाइम जो है वो तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। मैक्सिमम मेरे आपके दरमियान तकरीबन 6 मिनट बाकी हैं, लेकिन ये बिया से भाग जाएंगे हमारे हाथ से। वो कहते हैं जब मुझे आपके साथ गपशप लगाने का, बात करने का मज़ा आने लग जाता है ना, तो टाइम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये वो गाड़ी है जो पेट्रोल से नहीं बल्कि टाइम से चलती है। खैर कोई बात नहीं भाई, उदास बिल्कुल भी नहीं होना। अभी हम एक छोटा सा ट्रैक शामिल कर जाते हैं आपके अपने दरमियान और आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगेबान। अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. You are Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।

0: यहाँ भी एक वक्त हुआ है एक सॉन्ग का, सॉन्ग प्ले करते हैं, हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा। रेडियो FM 97.1 FM को एंजॉय कीजिए, क्योंकि FM 97.1 आपका अपना रेडियो है।
1: AI powered personal music teacher from Sarega.
0: सुनते रहिए FM 97.1।

समय ने ग्राम आपने सुना हुसैन तेरा तोबा तोबा एक फास्ट ट्रैक था जिसको हमने आपको सुना दिया। याद रखें, आपकी एक मुस्कुराहट, एक जुमला किसी एक इंसान का पूरा दिन बना सकता है। सोशल मीडिया खुद बुरा नहीं है, इसका इस्तेमाल अच्छा है बुरा हो सकता है। अगर यही प्लेटफॉर्म इल्म फैलाने के लिए इस्तेमाल हो तो सदका जारी बन जाता है, अगर वक्त ज़ाय करने, झूठ या नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल हो तो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया पर अफवाहें ना फैलाएं, बल्कि हकाइक से लोगों को आगाह करें, झूठ से बचें। अगर वक्त ज़ाय करने, झूठे नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल हो तो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए कोशिश करें कि हर पोस्ट करने से पहले सिर्फ एक सवाल ज़रूर पूछें, क्या ये अल्लाह को पसंद होगी? अगर जवाब हाँ में है तो ज़रूर शेयर कीजिए। आपके लिए एक मालूमात में इजाफा करते हैं कि रोज़ाना मोबाइल पर सिर्फ एक घंटा कम इस्तेमाल करने से एक साल में तकरीबन 365 घंटे बचाए जा सकते हैं। सोचिए इन घंटों में कितनी किताबें पढ़ी जा सकती हैं, और ये 365 घंटे तकरीबन 15 रोज़ बनते हैं, आपके 15 दिन बच सकते हैं।

कहीं मत जाइएगा क्योंकि प्रोग्राम अभी बाकी है, सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM। हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं 0115 7100971 पे, क्योंकि रेडियो फजा आपका अपना रेडियो है।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप
3: मुखड़ल
1: फिल्मी गाने,

समीर मोहतरम इंसान दूसरों के गुनाहों का काजी तो बन जाता है मगर अपने ऐबों पर कभी वकील बनना नहीं छोड़ता। इसलिए दूसरों के गुनाहों पे काजी मत बनिए बल्कि अपने ऐबों पे नजर दौड़ाइए क्योंकि आप अपनी इस्लाह खुद कर सकते हैं। याद रखिए कपड़े शक्ल और जुबान समाशा सच्चाई बयान नहीं करते। इंसान की असलियत वक्त पड़ने पर पता चलती है। इंसान के किरदार की दो मंजिलें दिल में उतर जाना और दिल से उतर जाना। अपने किरदार से दिल में उतर जाने का फन रखें। दिल से उतर जाना काफ़ी भयानक होता है जिसके बाद आप कुछ भी कर लें दोबारा वो मकाम हासिल नहीं कर सकते। इसलिए लोगों के दिलों में रहना सीखिए।

0: जाए।
1: तेरे इश्क दा जाम हसीना सुबह सी मेरी शाम हसीना ये बेमतलबी जिंदगी।
2: एक खूबसूरत नगमा आपने सुना रेडियो फजा एफएम 97.1 पर। एक बार फिर मैं आपका मेज़बान मुज़फ़्फ़र हैदर आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे, अपने कामों में मसरूफ होंगे, सफर में होंगे, दफ्तर में होंगे, घर में अहले खाना के साथ होंगे या शायद चाय का कप हाथ में थामे हुए हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे। आपकी ये मोहब्बत हमारी असल ताकत है और यही ताल्लुक हर रोज़ हमें आप तक पहुँचने का हौसला देता है। याद रखें, ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर नई सुबह इंसान को एक नया मौका देती है। कल अगर कोई गलती हुई, कोई फैसला दुरुस्त ना हो सका, कोई ख्वाब अधूरा रह गया या किसी बात पर दिल टूट गया, तो इसका मतलब हर किसी ये नहीं कि कहानी ख़त्म होगी। ज़िंदगी का हुसन ही यही है कि हर तुलू आफ्ताब के साथ अल्लाह ताला हमें एक नया सफ़ा अता फरमाता है, जिस पर हम अपनी किस्मत को मेहनत, इखलास और अच्छे किरदार से दोबारा लिख सकते हैं। अक्सर हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें अपनी नेमतें दिखाई ही नहीं देती। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आप सेहतमंद हैं, अपने पैरों पर चल सकते हैं, अपनी आंखों से दुनिया देख सकते हैं, अपने कानों पर से अपने पैरों की आवाज़ सुन सकते हैं, तो यकीन जानिए आप दुनिया के लाखों लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हैं। इंसान की फितरत है, जो उसके पास है उसकी कदर कम करता है और जो नहीं है उसके पीछे भागता रहता है। हालांकि सुकून ख्वाहिशों के पूरा होने से नहीं बल्कि शुक्र अदा करने से मिलता है। मेरे नौजवान दोस्तों, अगर आज आप अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि हालात आपके मुताबिक नहीं, वसाइल कम हैं या रास्ते बंद नज़र आते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं उनमें से अक्सर ने अपनी कामयाबी का सफ़र सिफर से शुरू किया। सिफर यानी ज़ीरो से। सिफर एक इकाई है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हालात को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया बल्कि अपनी ताकत बना लिया। वो गिरे भी नहीं, नाकाम भी हुए, लोगों ने उन पर तनकीद भी की, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। हमें दूसरों की कामयाबी देखकर हसद करने के बजाय अपनी मेहनत पर तवज्जो देनी चाहिए। हर इंसान का वक्त अलग होता है, हर शख्स का इम्तिहान अलग होता है और हर एक का रिस्क भी अल्लाह ताला ने अलग अलग रखा है। इसलिए अपना मुवाजना दूसरों से करने के बजाय कल के अपने आप से कीजिए। अगर आज आप कल से बेहतर इंसान हैं, तो यकीन जानिए आप तरक्की कर रहे हैं।

0: जाने दे।
1: It's commercial time.
2: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
7: यू आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग फजान 97.1 FM।

0: कमाल का भाव दे, सच्ची में अभी अभी चाइना से आया, और ओरिजिनल क्या है डुप्लीकेट क्या है यह आपको खुद पता नहीं चलेगा, है ना?
1: हाँ, विशाल भाई चश्मे डुप्लीकेट है, किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, अपने शॉप का एक रेपुटेशन है। हा?
2: तुम कहो तो तुम्हारा डुप्लीकेट बनवा के मंगवा दूं। फर्क बता दोगे ना तो नाम बदल दूंगा अपना।
1: अरे तुम तो नाम बदली कर लोगे अर्जुन भाई, लेकिन मेरा क्या होगा, बिजनेस में एक बार रेपुटेशन गया तो समझो सब कुछ गया।
0: अरे राजू भाई, मॉल में जो माल वाले लोग आते हैं ना, उन्हें खुद पता नहीं।

0: अर्जुन अर्जुन
1: हाँ
0: हाँ देखिए भाव बिल्कुल परफेक्ट दे रहा हूँ।

0: तुम्हारा नाम क्या है?
1: सोया।
0: अच्छा नाम है। जोया।
1: अरे तो वही है।
2: वही? वही कौन?
0: सोया।
1: अरे वही है जिसने आज शॉपिंग मॉल में।
3: अरे लेकिन ये स्पाइडरमैन की तरह क्यों आया ऊपर?
0: सोया।
1: क्योंकि ये ऐसा ही है। ए स्पाइडरमैन, क्या?
0: हाय हदुना।
1: हाँ
0: देखो मैं गिर जाऊंगा।
4: सामीन इकराम, देखते ही देखते आज का हमारा प्रोग्राम अपने ख़त्म को पहुँचा। उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू, पेश किए गए ख्यालात और ख़ूबसूरत लम्हात आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। आखिर में दुआ कि अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में खैर, बरकत, सुकून और आसानी अता फरमाए, हमारे वालिदैन की हिफाजत फरमाए, हमारे रिज़्क में वसअत अता फरमाए, बीमारियों कामिल शिफा नसीब फरमाए, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, हमें हमेशा नेकी, मोहब्बत और इखलास के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरे

0: सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रابطہ करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
7: You are listening 97.1 FM।

वो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू राज ना आए हम तेरे खास सदाए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर ना

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?

0: birthday की क्रेविंग मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ Esplay Pizza
1: from 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
2: Ariana Supermarket 126132 Grassington Road NG8 3P Nottingham Monday to Saturday 8 AM to 8 PM Sunday 10 AM to 8 PM Ariana Supermarket freshness you can trust prices you'll love.
3: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
0: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
3: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे. हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
0: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
3: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
0: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
3: Park Foods, जो नाम है मायार का.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं?
7: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का.
6: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स.
7: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट.
6: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह.
7: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है.
6: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS.
7: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
6: टेस्ट भी वाइब भी.
8: You are listening 97.1 FM.

Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैप।
6: Commercial time.
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
9: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
12: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।
13: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
14: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
13: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
14: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
13: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
15: You are listening 97.1 FM.
16: You are saying, we are playing
17: Fazan 97.1 FM.
18: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
19: 97.1 FM।
15: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115.

0: ट्रिक सुनना चाहते हैं?
1: साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
0: फिल्मी गाने,

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
8: फजान 97.1 FM,
9: आई लव इट।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेडन किंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.

0: maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
1: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
2: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Huzzah 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
13: यारा मेरे दिल के करीब।
14: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

0: You are listening to 97.1 FM Radio Fazer.
1: Radio Fazer.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, यहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा।
3: From 12:30 p.m. to 11 p.m. every Wednesday to Monday.
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 a.m. to 8 p.m., Sunday 10 a.m. to 8 p.m.
5: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are staying. We are
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM।
16: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication Hour.

0: यार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना, ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना, हाय हाय मीठे बहना।

0: सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया।
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फाजा ऑन 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: You are listening to 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27th मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM रेडियो

0: याद हो।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
9: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले.
5: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
6: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
5: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
6: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
5: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं.
6: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
5: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
5: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
8: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
9: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
9: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
10: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
9: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
9: Park Foods, जो नाम है मायार का.
12: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
13: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
14: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का.
13: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स.
14: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट.
13: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह.
14: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है.
13: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS.
14: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
13: टेस्ट भी वाइब भी.
15: You are listening 97.1 FM.